0: SBS, a world of difference. You're with SBS Hindi on mobile, online, and on radio.
1: आप सुन रहे हैं SBS Hindi mobile, online, और radio पर.
2: SBS हिंदी के एक नए शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है. मैं हूं नबील. और शो शुरू करने से पहले हम इस धरती के पूर्वजों और कुलीन राज के वुरुंजुरी और वुईवुरुंग लोगों को और उनके बुजुर्गों को सम्मान के साथ प्रणाम करते हैं. हम उन सभी टॉरेस स्ट्रेट आइलैंडर भूमि के पारंपरिक मालिकों को भी आदरपूर्वक याद करते हैं जिनकी भूमि पर यह कार्यक्रम सुना जा रहा है. तो आज के शो में कौन कौन सी रिपोर्ट आने वाली है, सबसे पहले उसकी बात कर लेते हैं. आज के शो में ऑस्ट्रेलिया की फेडरल पार्लियामेंट से एक

पॉलिटिकल डिबेट। विंटर ब्रेक से पहले पार्लियामेंट के आखिरी सेशन में नेगेटिव गियरिंग और कैपिटल गेन्स टैक्स जैसे बड़े टैक्स रिफॉर्म्स पर तेज बहस होने के आसार हैं, जहां ऑपोजिशन इन बदलावों के सख्त विरोध में है। इसके बाद आएगी इंडिया रिपोर्ट, जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं भारत की कुछ खास खबरें। फिर सुनेंगे एक खास रिपोर्ट रीजनल ऑस्ट्रेलिया से, जहां इंडियन ग्रोसरी स्टोर्स सिर्फ शॉपिंग का जरिया नहीं बल्कि कल्चर और कम्युनिटी कनेक्शन का भी एक बहुत ही जरूरी हिस्सा या ब्रिज बन रहे हैं। शेपर्टन के विनय कुमार अपने स्टोर के थ्रू इसी कल्चरल रोल को समझाएंगे। और अंत में एक आखिरी रिपोर्ट ऑस्ट्रेलिया एक्सप्लेन्ड की, जिसमें हम समझेंगे कि ऑस्ट्रेलिया में फंड रेजिंग के रूल्स कैसे काम करते हैं, चाहे आप चैरिटी के लिए डोनेट कर रहे हों या खुद फंड रेज कर रहे हों, क्या कैसी गाइडलाइंस होती हैं, क्या रूल्स होते हैं जिनको फॉलो करना बहुत जरूरी है। तो ये सारी रिपोर्ट्स आएंगी एक एक करके और ढेर सारे गाने भी आपके लिए प्ले करेंगे, लेकिन सबसे पहले सुन लेते हैं न्यूज फ्लैश। बुधवार 24 जून की खास खबरों के साथ मैं हूं नबील हसन। ऊर्जा मंत्री क्रिस बोवेन ने कहा है कि उन्होंने पावर कंपनी से पूछा है कि 1 जुलाई से कुछ प्राइसेस क्यों बढ़ने वाले हैं और क्या ये मिसकंडक्ट लॉस का उल्लंघन है। एनर्जी रिटेलर्स द्वारा उपभोक्ताओं को भेजे गए नोटिसेस में जुलाई से रेट्स बढ़ने का संकेत दिया गया है, जिसमें कुछ उपभोक्ताओं के लिए डेली फिक्स चार्जेस में 86% तक बढ़ोतरी शामिल है। ऑस्ट्रेलियन एनर्जी रेगुलेटर के 2026-27 के फाइनल ऑफर के अनुसार देश के ज्यादातर हिस्सों में हाउसहोल्ड्स के लिए कीमतों में लगभग 10% तक कमी आने की उम्मीद थी। क्रिस बोवेन ने कहा है कि उन्होंने रेगुलेटर ऑस्ट्रेलियन कंपटीशन एंड कंज्यूमर कमीशन से जांच करने को कहा है कि क्या किसी तरह का लीगल ब्रीच हुआ है। ऑस्ट्रेलिया में मई महीने के लिए एनुअल इन्फ्लेशन साल दर साल 4% दर्ज की गई है, जो पहले 4.2% थी। ऑस्ट्रेलियन ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के अनुसार सालाना इन्फ्लेशन में सबसे बड़ा योगदान हाउसिंग का रहा, उसके बाद फूड एंड नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस और ट्रांसपोर्ट का स्थान रहा। ट्रिम्ड मीन इन्फ्लेशन, जिसे सेंट्रल बैंक का प्रमुख इंडिकेटर माना जाता है, 3.6% रही है, जो अप्रैल 2026 तक के 12 महीनों में 3.4% थी। सोशल सर्विसेज मिनिस्टर तानिया पिल्बर्सेक ने कहा है कि पेड पेरेंटल लीव ऐसी पॉलिसी है जो पॉलिन हैंसन के हाथों में सुरक्षित नहीं रहेगी। पॉलिन हैंसन ने पेड पेरेंटल लीव को लेकर अपने कंट्रोवर्शियल रिमार्क्स पर सफाई दी है, जिसमें उन्होंने नेशनल प्रेस क्लब में दिए गए अपने पहले एड्रेस के दौरान इसके खिलाफ बोलने जैसा संकेत दिया था। क्वींसलैंड की सेनेटर ने कहा है कि उनके बयान को कॉन्टेक्स्ट से बाहर लिया गया है और उनका इसे खत्म करने का कोई इरादा नहीं है। 21 जुलाई से गवर्नमेंट फंडेड पेड पेरेंटल लीव को 120 दिनों से बढ़ाकर 130 दिनों तक किया जाएगा। तानिया पिल्बर्सेक

0: You are listening to SBS.
1: Ice Cube's Big 3 is back. The most competitive basketball league on earth is on CBS this Saturday. Big 3 All-Star Dwight Howard and the LA Riot take on Greg Monroe and the Dallas Power. Then Coach Rick Mahorn, Sensation Nasir Khor, and the Detroit Amps look to protect home court against back-to-back MVP Michael Beasley and the defending champs Miami 305. The game played the way you love. Watch live Saturday on CBS at 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific, and catch replays on BET. Yay!
2: ये सबसे अधिक वल्नरेबल ग्रुप्स जैसे वुमेन एंड गर्ल्स, गे मेन, ट्रांसजेंडर पीपल और सेक्स वर्कर्स का क्रिमिनलाइजेशन भी वायरस के फैलाव को बढ़ा रहा है। और अब खबर भारत से। इंडिया और अमेरिका के बीच प्रपोज ट्रेड डील को अंतिम रूप देने की कोशिशें तेज हो गई हैं। अमेरिका के ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव जैमिसन ग्रीर अपने पहले ट्रेड डेलीगेशन के साथ भारत की यात्रा पर हैं, जहां वो यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पीयूष गोयल और अन्य अधिकारियों के साथ बातचीत कर रहे हैं। दोनों देश एक इंटरिम ट्रेड एग्रीमेंट को जल्द पूरा करने की दिशा में काम कर रहे हैं, जिसमें टैरिफ्स, मार्केट एक्सेस और ट्रेड बैरियर्स जैसे मुद्दों पर चर्चा हो रही है। हालांकि एग्रीकल्चर, डिजिटल ट्रेड और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जैसे कुछ विषयों पर अभी भी मतभेद बने हुए हैं, लेकिन दोनों पक्षों ने समझौते को आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता जताई है। ये था आज का न्यूज फ्लैश नबील हसन के साथ। अन्य खबरों और जानकारी के लिए बने रहिए SBS हिंदी पर। हमारी वेबसाइट है sbs.com.au/hindi। न्यूज फ्लैश के बाद अब वक्त हो गया है हमारे शो के पहले रिपोर्ट का। और ऑस्ट्रेलियाई फेडरल संसद में नेगेटिव गियरिंग और कैपिटल गेन्स टैक्स जैसे बड़े कर सुधारों पर तेज बहस होने की संभावना है और विपक्ष इन बदलावों का कड़ा विरोध कर रहा है। आइए सुनते हैं इसी से जुड़ी भव्य पांडे की ये रिपोर्ट।
3: नमस्कार दोस्तों, ऑस्ट्रेलियाई फेडरल संसद शीतकालीन अवकाश से पहले अपने अंतिम दो हफ्ते के सत्र के लिए लौट आई है। आने वाले दिनों में संसद में दो बड़े मुद्दों पर तीखी बहस देखने को मिल सकती है, संपत्ति निवेश से जुड़े कर सुधार और नेशनल डिसेबिलिटी इंश्योरेंस स्कीम यानी NDIS में प्रस्तावित बदलाव। सरकार का कहना है कि ये कदम आवास की उपलब्धता बढ़ाने और सरकारी खर्च को नियंत्रित करने के लिए जरूरी है, जबकि विपक्ष और ग्रीन्स पार्टी इनका विरोध कर रहे हैं। इस बीच इन प्रस्तावों के असर को लेकर राजनीतिक माहौल गर्म हो गया है। फेडरल संसद के इस सत्र में सरकार की प्रस्तावित कर सुधार यानी टैक्स रिफॉर्म्स योजना सबसे प्रमुख राजनीतिक मुद्दों में से एक बन गई है। लेबर सरकार नेगेटिव गियरिंग को जुलाई 2027 से केवल नए मकानों तक सीमित करना चाहती है। साथ ही कैपिटल गेन्स टैक्स पर मिलने वाली मौजूदा 50% छूट को महंगाई आधारित व्यवस्था से बदलने का प्रस्ताव है। ऐसे में विपक्षी नेता एंगस टेलर ने एक बार फिर इन प्रस्तावों का विरोध किया है।
4: We've said from the start they should be axed. Right from the beginning we've said that they should be it's not a we don't need a carve out. We need an axe. And we've said that from the start.
3: सरकार का कहना है कि छोटे व्यवसायों की चिंताओं को ध्यान में रखते हुए कई एक्सेप्शंस का प्रावधान किया गया है। $10 million तक के वार्षिक कारोबार वाले व्यवसायों को मौजूदा कैपिटल गेन्स टैक्स रियायतें मिलती रहेंगी। कुछ नवाचार आधारित स्टार्टअप संस्थापकों को भी विशेष छूट दी जाएगी। ऐसे में उद्योग मंत्री टिम एयर्स का कहना है कि बजट में शामिल विभिन्न उपाय स्मॉल बिजनेसेस की उत्पादकता यानी productivity और विकास यानी development को बढ़ावा देंगे।
5: All of the measures in the budget, when you put them together, are a very substantial package. In my area, supporting research and development, the tax incentive there, strengthening those measures, loss carryback, instant asset write-offs, all of these measures support dynamism and productivity in our small business sector.
3: वहीं विपक्ष का आरोप है कि ये कर सुधार निवेश और आर्थिक विश्वास को नुकसान पहुंचा सकते हैं। संपत्ति बाजार के हालिया आंकड़ों ने भी बहस को और तेज कर दिया है। सप्ताहांत में लगभग 1900 मकान नीलामी के लिए आए, लेकिन केवल 47.4% की ही बिक्री हो पाई है। ये अप्रैल 2020 के बाद से सबसे कम ऑक्शन क्लियरेंस रेट माना जा रहा है। विपक्ष के उपनेता जेन ह्यूम का कहना है कि बाजार में अनिश्चितता बढ़ गई है।
6: No wonder people aren't selling. They're choosing not to sell. They're choosing not to sell because they're waiting to see what the

0: effect of these taxes are going to be. And no wonder people are choosing not to buy, because they don't know how these taxes are going to affect them, how they're going to affect their businesses, how they're going to affect their prospects.
1: हालांकि सरकार का तर्क है कि आवास की कीमतों में लगातार तेज वृद्धि ने युवा ऑस्ट्रेलियाई लोगों के लिए घर खरीदना मुश्किल बना दिया है. सामाजिक सेवा मंत्री टानिया प्लेबरसिक का कहना है कि सरकार घरों की कीमतें गिराना नहीं चाहती, बल्कि उनकी वृद्धि की रफ्तार को नियंत्रित करना चाहती है.
2: House prices have been growing too fast, and that's meant that young Australians haven't been able to afford a home of their own. It used to be that the average house cost about 4 years of the average wage. Now it's about 8.5 years of the average wage. People just can't keep up with that because they've been competing with property investors for those houses.
1: उधर संसद में दूसरा बड़ा विवाद NDIS सुधारों को लेकर है. सरकार का कहना है कि योजना की दीर्घकालिक वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए बदलाव लाने जरूरी हैं. प्रस्तावित सुधारों के तहत बड़ी संख्या में लोगों को राज्य और क्षेत्रीय सहायता कार्यक्रमों की ओर भेजा जा सकता है. हालांकि ग्रीन्स पार्टी इन बदलावों का कड़ा विरोध करती नजर आई है. ग्रीन सेनेटर जॉर्डन स्टील जॉन ने संसद में सरकार के प्रस्तावों को अमानवीय बताया है.
3: लेबर्स एनडीआईएस बिल इज जस्ट क्रूल. इट शुड बी स्क्रैप्ड. It should be withdrawn, it should be removed, it should be torn up, quite frankly, loaded into a cannon, and if I had my way, fired into the sun.
1: उनका कहना है कि प्रस्तावित कटौतियां हजारों लोगों और कई नौकरियों को प्रभावित कर सकती है.
3: $185 billion over the decade, that is the largest cut to a Commonwealth program in the history of this nation. These cuts go too far. They go too fast. They will cost too many jobs. They put at risk too many lives.
1: विपक्ष भी इस मुद्दे पर अधिक जांच और समीक्षा की मांग कर रहा है. विपक्षी नेता एंगस टेलर का कहना है कि NDIS को टिकाऊ और प्रभावी बनाए रखना जरूरी है.
4: Because we want it to work. We need a sustainable NDIS. This is critically important for those Australians who are most in need of that disability support. We want to see it work. We also want it to be financially, economically sustainable. And it clearly hasn't been.
1: आइए जानते हैं NDIS प्रदाता हीना सिन्हा चुंग का इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचना है.
5: That industry is looking after the most vulnerable people of our society. तो अगर हम उनकी जो lived realities हैं, उनको अगर हम इसमें consider नहीं करेंगे तो ना ही government कोई outcomes achieve कर पाएगी, ना ही providers. So number one is clarity. We need more clarity. कब कैसे क्या changes लाई जाएंगी. और दूसरी चीज ये कि इन चेंजेस को अफेक्ट होने के लिए जो सपोर्ट प्रोवाइडर्स को चाहिए, क्या वो गवर्नमेंट प्रोवाइड करने के लिए रेडी है, या फिर वो सिर्फ स्कीम सस्टेनेबिलिटी के बारे में सोच रहे हैं. वो ये नहीं सोच रहे कि जो स्मॉल टू मीडियम साइज बिजनेस ओनर्स हैं, वो कैसे कंटिन्यू कर सकेंगे अपना केयर.
1: इन दोनों प्रमुख मुद्दों के अलावा प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीजी राज्य और क्षेत्रीय नेताओं के साथ ईंधन सुरक्षा पर भी चर्चा कर रहे हैं. सरकार ने हाल ही में पेट्रोल पर मिलने वाली एक्साइज छूट को एक महीने के लिए बढ़ाने की घोषणा की है. हालांकि जुलाई से मौजूदा 32 सेंट प्रति लीटर की छूट घटाकर 16 सेंट प्रति लीटर कर दी जाएगी. अब संसद के इस अंतिम पखवाड़े में सभी की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि सरकार अपने प्रमुख सुधारों को कानून का रूप दिलाने में कितनी सफल रहती है. SBS न्यूज के लिए एंजेलिका वेट की इस खबर को SBS हिंदी में आप तक लेकर आई भव्या पांडे.
6: ¿Por qué elegir entre velocidad, confianza y buen precio si con Spectrum Internet con fibra óptica puedes tenerlo todo por solo $40 al mes? Sin contratos, sin compromisos. Solo Internet increíble a un precio increíble. Cámbiate hoy y obtén Spectrum Internet con fibra óptica por solo $40 al mes. Visita spectrum.com/todo. Spectrum Internet funciona con tecnología de fibra y se conecta al domicilio mediante líneas coaxiales. Se aplican restricciones.
7: Ice Cube's Big 3 is back. The most competitive basketball league on earth is on CBS this Saturday. Big 3 All-Star Dwight Howard and the LA Riot take on Greg
8: Monroe and the Dallas Power. Then Coach Rick Mahorn, Sensation Nazir Kor, and the Detroit Amps look to protect home court against back-to-back MVP Michael Beasley and the defending champs Miami 305. The game played the way you love. Watch live Saturday on CBS at 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific, and catch replays on BET.
9: Yay, yay!
10: SBS Audio.
11: अपने मनपसंद ऑडियो को सुनने के लिए प्ले दबाएं.
12: यही ज्यादा दिया. चुनते हैं हॉलम.
13: SBS Chill.
14: SBS Pop Asia. Non-stop Asian pop.
15: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
16: SBS Hindi उपलब्ध करवाता है.
17: Far from the partisan politics.
18: 60 से अधिक भाषाओं में समाचार के साथ आपके मूड से मेल खाने वाला संगीत और मनोरम पॉडकास्ट आपका इंतजार कर रहे हैं. SBS Audio ऐप डाउनलोड करें या फिर
19: sbs.com.au/audio.
20: SBS हिंदी पर एक बार हमारे साथ वापस जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. मैं हूं नबील और अब वक्त हो गया है हमारे अगले करंट अफेयर सेगमेंट का. तो आइए सुन लेते हैं इंडिया रिपोर्ट जो आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं गौरव, और इसमें होंगी भारत की कुछ खास खबरें.
21: ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक में चुनौतियों से मिलकर निपटने पर सहमति बनी है. नई दिल्ली में मंगलवार को समाप्त हुई इस बैठक में मौजूदा सुरक्षा चुनौतियों पर विचार विमर्श किया गया. इस दौरान पारंपरिक सुरक्षा के अलावा ऊर्जा, साइबर, सप्लाई चेन, आतंकवाद और जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों पर भी चर्चा हुई. इस बैठक के बारे में ज्यादा जानकारी देते हुए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया.
22: The BRICS NSA meeting is happening over 2 days, 22nd and 23rd. On 22nd, that is yesterday, National Security Advisor, he had bilateral meetings with several of his counterparts, including from Iran, Ethiopia, Brazil, China and South Africa. The agenda is how do these BRICS, the BRICS countries together, they deal with non-traditional security challenges that the world confronts. Also, they would discuss the evolving nature of national security challenges and the role of new technologies in the emerging security threats. There are other elements also that was part of the discussions.
21: अमेरिका ईरान समझौते के बाद हॉर्मुज स्ट्रेट फिर से सामान्य रूप से संचालित हो रहा है. 17 जून को अमेरिका और ईरान के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ था. इसका सकारात्मक असर भारत आने वाले जहाजों पर भी पड़ा है. रणधीर जायसवाल इस बारे में बताते हैं.
22: 10 भारतीय जहाज, भारतीय पताका के साथ वाले जहाज पर्शियन गल्फ में खाड़ी में अभी हैं. 2 हमारे जहाज वहां इधर से उधर गए और 10 उधर से आने हैं. 11 हमारे जहाज जो भारत की तरफ आना है वो 17 तारीख से, जिस दिन एमओयू हुआ है उसके बाद से 11 जहाज भारत की तरफ रवाना हुए, तो हॉर्मुज पार करके. इससे आपको स्थिति साफ पता चलता है कि क्या वहां पर स्थिति बनी हुई है. तो ये 11 जहाज जो भारत की तरफ आ रहे हैं, इसमें से 3 भारतीय जहाज हैं जो कि क्रूड ऑयल टैंकर्स हैं. इनमें 2,85,000 मेट्रिक टन क्रूड ऑयल है. इसके अलावा एक विदेशी पताका के साथ एक एलपीजी टैंकर जो भारत की तरफ आ रहा है.
21: और अब चर्चा पश्चिम बंगाल की, जहां सत्ता से बाहर होने के बाद तृणमूल कांग्रेस बिखरती जा रही है. पार्टी पर बागी विधायकों और नेताओं ने अपना दावा ठोका है. चुनाव आयोग में जाकर पार्टी चुनाव चिन्ह पर भी दावा किया गया है. ममता बनर्जी की अगुवाई वाले तृणमूल कांग्रेस के नेताओं ने बागी गुट के नेताओं पर भाजपा के इशारे पर काम करने का आरोप लगाया है. वहीं भाजपा नेता और राज्य सरकार में मंत्री अग्नि मित्रा पाल ने तृणमूल कांग्रेस के आरोपों को बेबुनियाद बताया है. उन्होंने ममता बनर्जी पर कटाक्ष करते हुए कहा,
23: आप जो बोते हैं लगाते हैं उसका फल उसी तरह आपके पास आएगा. आप ममता बनर्जी और इंडी अलायंस के पार्टनर जिस तरह से भारत विरोधी जो क्षमता उसको जैसे सपोर्ट किए थे टुकड़े टुकड़े गैंग के, तो टुकड़े टुकड़े गैंग आज वही जो सपोर्ट किए थे आज ममता बनर्जी का टुकड़े टुकड़े गैंग हो गए. ये एक केस स्टडी हो गया कि एक पार्टी जो 15 साल इतना ओडासिटी, इतना उद्धत्व, इतना एरोगेंस और इतना उन्नयन कर...

0: करने का जो प्रॉमिस दिए थे कुछ हुआ नहीं, आज वही पार्टी एक महीना के अंदर टुकड़े टुकड़े गैंग हो गए। ये एक अच्छा केस स्टडी बन सकता है।
1: मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार पर कांग्रेस पार्टी ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। दरअसल राज्य के मुख्यमंत्री मोहन यादव के परिजनों पर जमीन घोटाले में शामिल होने का आरोप मीडिया के जरिए सामने आया है। उज्जैन के कई जमीन सौदों में गड़बड़ी की आशंका जताई गई है। इस खबर के बाद कांग्रेस पार्टी ने मुख्यमंत्री के विरुद्ध मोर्चा खोल दिया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव के इस्तीफे की मांग करते हुए कांग्रेस पार्टी ने निष्पक्ष जांच की मांग भी की है। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा,
2: राम मंदिर के चंदा चोरी में भी भारतीय जनता पार्टी और महाकाल की जमीन लूट में भी भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी ने दोनों में छूट दे रखी है।
1: मीडिया रिपोर्ट के हवाले से सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए जीतू पटवारी कहते हैं,
3: मुख्यमंत्री परिवार की सभी कंपनियों के हिस्सेदार फॉरेंसिक ऑडिट कराने के लिए तैयार है। मीडिया रिपोर्ट्स ने दावा किया कि भूमि खरीदी के कुछ समय बाद ही हाउसिंग प्रोजेक्ट बिल्डर एग्रीमेंट शुरू हो गए उन कंपनी उन जमीनों पर, क्या पहले नियोजित व्यवसाय की रणनीति का हिस्सा था कि जमीन खरीदेंगे, मास्टर प्लान में चेंज आएंगे, परियोजना लाएंगे, उस बीच में रियल एस्टेट कंपनी से हम अपना एग्रीमेंट करेंगे और जो 10 रुपए की जमीन है वो 1000 रुपए की करेंगे, ये पहले से प्लान आउट था क्या?
1: मोहन यादव के विरुद्ध षड्यंत्र भाजपा ही कर रही है, ऐसा दावा समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने किया है।
4: मोहन यादव जी को बदनाम करने के लिए ये बीजेपी ने साजिश की है, और अगर मोहन यादव पे ये आरोप है तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने तो 300-600 एकड़ जमीन ली है, कि जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो रियल एस्टेट का पहले से जमीनों का काम करते थे, क्या ये बीजेपी नहीं जानती कि वो जमीनों के काम करते थे? तो अब ये आरोप पता है क्यों लगाया जा रहा है? बीजेपी रास्ता ढूंढ रही है कि 3 मुख्यमंत्री कैसे बदलें, वो मुख्यमंत्री बदलना चाहते हैं इसलिए आरोप लगवा रहे हैं।
1: जमीन घोटाले को लेकर सारे आरोपों को भाजपा ने बेबुनियाद बताया है। भाजपा की प्रदेश इकाई के अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने मुख्यमंत्री मोहन यादव का बचाव करते हुए कहा कि झूठे आरोपों के जरिए भ्रम फैलाने का प्रयास किया जा रहा है। इधर उत्तर प्रदेश में राम मंदिर के चढ़ावे में गड़बड़ी को लेकर भाजपा की सरकार विपक्ष के निशाने पर है। अयोध्या राम मंदिर को मिलने वाले चढ़ावे में व्यापक गड़बड़ी के मामले सामने आए थे। इसके बाद इसकी जांच के लिए एक उच्च स्तरीय समिति यानी SIT का गठन किया गया था। SIT ने मंगलवार को अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंप दी है। चढ़ावे की चोरी को बड़ा मुद्दा बताते हुए कांग्रेस पार्टी ने भाजपा को घेरा है। इधर भाजपा ने दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की बात कही है। भाजपा का कहना है कि किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। भारत से आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। मैं विश्वरत्न SBS रेडियो की हिंदी सेवा के लिए।
5: आप सुन रहे हैं SBS हिंदी, मैं हूं नबील। और इंडिया रिपोर्ट के बाद आज के शो का सवाल पूछ लेते हैं। और क्योंकि हर तरफ स्पोर्ट्स का पागलपन चढ़ा हुआ है, फीफा हर जगह चल रहा है और विश्व कप हर कोई देख रहा है, तो आप ये बताइए कि अगर बॉलीवुड की बात करें तो आपकी कौन सी फेवरेट स्पोर्ट्स मूवी रही है जो आपको देख के बड़ा मजा आया है? तो 0439-799-767 पर मैसेज करके बताइए आपकी फेवरेट बॉलीवुड स्पोर्ट्स मूवी। और कई मूवीज है जिसमें क्रिकेट, फुटबॉल, बॉक्सिंग और कई और खेल पर मूवीज आई हैं, तो हमें रिकमेंड करिए आपकी कौन सी वॉच लिस्ट है। 0439-799-767 और अपना नाम भी जरूर लिख के भेजिएगा। चलिए अब ले लेते हैं एक एड ब्रेक। एड ब्रेक के बाद वापस आकर आपके लिए प्ले करेंगे कुछ गाने और गानों की शुरुआत होगी और फिर कुछ और रिपोर्ट। सुनते रहिए SBS हिंदी।
6: Ice Cube's Big 3 is back. The most competitive basketball league on earth is on CBS this Saturday. Big 3 All-Star Dwight Howard and the LA Riot take on Greg Monroe and the Dallas Power. Then Coach Rick Mahorn, sensation.

0: their core, and the Detroit Amps look to protect home court against back-to-back MVP Michael Beasley and the defending champs Miami 305.
1: The game played the way you love.
0: Watch live Saturday on CBS at 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific, and catch replays on BET.
2: Yay!
3: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit Dick's.com/scorecardplus for details.
4: Spectrum TV makes sports easy, so I never miss. Never miss a homer. Never miss a home field hat trick. Never miss a goal line stand inches from the end zone. Never miss an end-to-end, tic-tac-toe, top-shelf snipe. Never miss a downtown buzzer beater for the championship win. Get your favorite streaming apps included at no extra cost with Live TV. It's one plan, one price, one place for all your sports. For details, visit SpectrumTV.com.
5: If you love to travel, Capital One has a rewards credit card that's perfect for you. With the Capital One Venture X card, you earn unlimited double miles on everything you buy. Plus, you get premium benefits at a collection of luxury hotels when you book on Capital One Travel. And with Venture X, you get access to over 1,000 airport lounges worldwide. Open up a world of travel possibilities with the Capital One Venture X card. What's in your wallet?
6: Terms apply. Lounge access is subject to change. See CapitalOne.com for details.
7: sbs.com.au/hindi ko apna online home banaiye. Taza tareen khabrein apni bhasha mein paiye. sbs.com.au/hindi par jaye. Kya aapko SBS Hindi sunna acha lagta hai? Apni baatcheet humse jari rakhiye hamare Facebook page par. Hamara page like karein. SBS Hindi. Facebook पर भी है।
8: SBS हिंदी पर हमारे साथ वापस जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आज के शो का हमने ये सवाल पूछा था कि आजकल हर तरफ स्पोर्ट्स का एक क्रेज बना हुआ है क्योंकि फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है, तो अगर बॉलीवुड की बात करें तो आपकी फेवरेट स्पोर्ट्स मूवी कौन सी थी और जो आप हमेशा देखना पसंद करते हैं। तो दो मैसेजेस हमारे पास आए हैं। पीयूष जी लिखते हैं कि लगान मूवी उनकी फेवरेट है। और एक और मैसेज आया है मनन का फ्रॉम मेलबर्न, वो लिखते हैं कि माय फेवरेट स्पोर्ट मूवी इज JJWS, आई थिंक जो जीता वही सिकंदर की बात कर रहे हैं। और ये दोनों आमिर खान की मूवी है। और एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग मैंने अभी इंटरव्यू देखा था कुछ दिन पहले, जब लगान मूवी की 25 साल का एनिवर्सरी सेलिब्रेशन हो रहा था और इसके राइटर डायरेक्टर लिरिसिस्ट सब एक साथ आए थे। और उसमें जावेद अख्तर ने बताया कि जो मूवी का गाना है ओरे छोरी, उसमें जो बीच में इंग्लिश पार्ट आता है उसके लिए उन्होंने अपने जो बच्चे हैं जावेद फरहान अख्तर और जोया अख्तर, उनसे वो पार्ट लिखवाया था। और ये चीज उस इंटरव्यू में बताई गई थी। तो चलिए आप ही बताइए आपकी फेवरेट स्पोर्ट्स मूवी कौन सी है बॉलीवुड से। 04397997767 हमारा नंबर है और अपना नाम भी जरूर लिखिएगा। मैं आपको मिलता हूँ इस गाने के बाद। सुनते रहिए SBS हिंदी।

0: SBS हिंदी पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं नबील और इस वक्त हमारे समय हो गया है अगले रिपोर्ट का। क्षेत्रीय ऑस्ट्रेलिया में इंडियन ग्रोसरी स्टोर केवल सामान बेचने का काम नहीं करती, बल्कि भारतीय संस्कृति और परंपराओं को स्थानीय समुदायों तक पहुंचाने का माध्यम भी बनती हैं। इस पॉडकास्ट में शेपर्टन के ऐसे ही एक ग्रोसरी स्टोर के मालिक विनय कुमार बताते हैं कि उनका स्टोर किस तरह विभिन्न समुदायों को जोड़ने और सांस्कृतिक समझ को बढ़ावा देने में योगदान देता है। आइए सुनते हैं नताशा कौल की ये रिपोर्ट।
1: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं नताशा कौल SBS हिंदी टीम से। ऑस्ट्रेलिया में और कहीं आप गए हो न हो, लेकिन भारतीय ग्रोसरी स्टोर जरूर गए होंगे। इंडियन ग्रोसरी स्टोर भारतीय समुदाय का ऑस्ट्रेलिया में एक अभिन्न हिस्सा है। इन दुकानों के पीछे अक्सर ऐसे छोटे व्यवसायी होते हैं जो सुबह से लेकर देर रात तक कड़ी मेहनत करते हैं ताकि समुदाय की जरूरतों को पूरा किया जा सके। आज हम ऐसे ही एक ग्रोसरी स्टोर के मालिक से जुड़ रहे हैं, जो अपने मित्र शिरीष के साथ मिलकर विक्टोरिया के रीजनल क्षेत्र शेपर्टन में एक इंडियन ग्रोसरी स्टोर चलाते हैं। लेकिन ये दुकान केवल रोजमर्रा की जरूरतों का सामान उपलब्ध कराने का केंद्र ही नहीं, बल्कि क्षेत्रीय ऑस्ट्रेलिया में भारतीय संस्कृति, परंपराओं और खाने के स्वाद को जीवंत बनाए रखने का भी माध्यम है। साथ ही ये स्थानीय भारतीय समुदाय को जोड़ने, नए प्रवासियों को अपनापन महसूस कराने और विभिन्न संस्कृतियों के बीच संवाद को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो चलिए मिलते हैं विनय से, जो शेपर्टन में एक इंडियन ग्रोसरी स्टोर चलाते हैं।
2: हाँ, मेरा नाम है विनय कुमार बिरदा राजू और मैं हूँ बेसिकली आई एम फ्रॉम हैदराबाद इन इंडिया एंड वी मूव टू in Australia back in 2004 as a student. Yes, मैं अपना मास्टर्स करने आया था यहाँ पे। That was back in 2004. I studied in Latrobe University in Bandura. तो पढ़ाई के बाद मैं जॉब कर रहा था और ऑप्टस के साथ एक डेढ़ साल काम किया था। उसके बाद मेरा PR हो गया एंड देन मैं मूव हो गया था सिडनी को। सिडनी में भी एज एन IT एक्सपर्ट मैंने ढाई साल काम किया। उसके बाद में 2009 में हम शेपर्टन मूव हो गया अपने, क्योंकि ना मेरा था कि पहले से ही मन कि लाइक हम खुद का अपना कुछ खुद करें, तो हमने यहाँ पे शेपर्टन में मूव हो गया था स्टार्टिंग आवर फर्स्ट वेंचर बिजनेस में पेट्रोल स्टेशन के साथ।
1: अच्छा।
2: जी, तो उसके बाद में धीरे धीरे यहाँ पे शेपर्टन अच्छा लगने लग गया एंड सारे यहाँ जब हम आए थे ऑलरेडी यहाँ पे बहुत सारे पंजाबी कम्युनिटी थे, मलयाली कम्युनिटी भी थे, तो वी वर लाइक Never left out of कि हमें ऐसा कुछ नहीं लगा कि हम कंट्री कहीं इंडिया छोड़ के आए थे। यहाँ पे पंजाबी बहुत अच्छे थे, यहाँ पे हमें उन्होंने अपनाया था, तो हमने सारे कम्युनिटी को मिला एंड वी लाइक द प्लेस शेपर्टन। उसके बाद में धीरे धीरे से हमने पेट्रोल स्टेशन के बाद इंडियन शॉप लिया था जो हम अभी भी रन कर रहे हैं। पेट्रोल स्टेशन तो बेच दिया हमने 6 साल के बाद, बट लाइक इंडियन शॉप हम चला रहे थे लास्ट 15 ईयर्स। तो ये इंडियन शॉप ने एस्टैब्लिश किया था हमारे से पहले एक

0: पंजाबी कम्युनिटी ने, ये शॉप 15 साल से अच्छा चला रहा है हम यहाँ पे। उसके बाद में हमने एक इसके बाद में ये हमारा दूसरा वेंचर हो गया। उसके बाद में कम्युनिटी के सपोर्ट से और अपनी ये सारे के साथ हमने अपनी करियर में आगे भी और 2-3 बिजनेसेस में इन्वेस्ट किया था। सो इट्स बीन रियली गुड सो फार शेपर्टन जर्नी हमारे साथ रीजनल टाउन में।
1: बिने और कितने इंडियन ग्रोसरी स्टोर्स हैं शेपर्टन में? और ये मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि मेलबर्न में तो बहुत सारी हैं, लेकिन रीजनल एरिया जो जैसे शेपर्टन है वहाँ कितनी शॉप्स देखने को मिलती हैं आपको?
0: जब हम आए थे तो यही एक शॉप था और एक था मिडल ईस्ट का शॉप, एक टर्की शॉप, बट इंडियन शॉप तो वैसे कुछ नहीं है। बट हमारे आने के बाद कम्युनिटी बढ़ रहा था तो 2-3 शॉप्स और आए थे, बट लाइक वो अभी फिलहाल नहीं है, वो अपने फॉर सम रीजंस दे हैव बंद कर दिया। मगर हमारा एक ही शॉप है जो लास्ट 15 ईयर से कम्युनिटी को सर्व कर रहा है। उसके बाद में अभी रिसेंटली कोविड के बाद क्यूनल अभी और भी इंडियंस फ्रॉम हर कॉर्नर से आ रहे थे यहाँ पे, तो एक और अभी साउथ इंडियन शॉप मलयाली कम्युनिटी के लिए भी खुला है। तो बट लाइक प्रीडोमिनेंटली यही जो शॉप है जो सब आते हैं यहाँ। पर्सनल के तौर पे हम कुछ इंडिया से मंगाते नहीं है क्योंकि ना यहाँ पे क्या होता है बेसिकली टू इंपोर्ट डायरेक्टली फ्रॉम इंडिया थोड़ा सा हेक्टिक है, कि रीजन बीइंग आपको बहुत सारे कुछ लाइसेंस लेना पड़ता है और आपके ट्रांजिट के टाइम ही इतना बड़ा है कि लाइक आप वेट करते रहोगे अपने नेक्स्ट कंटेनर का, और एक शॉप के लिए इंडिया से मंगाना थोड़ा वेरी बिग चैलेंज है। बट इन सेइंग दैट कि हम मेलबर्न से बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर से जो बड़े लेवल पे मंगाते तो हम उनसे खरीदते हैं। सो मेलबर्न से ही मेरा हमारा सामान जो भी है एवरीथिंग लाइक फ्रोजन ड्राई चिलर एवरीथिंग हम मेलबर्न से ही मंगाते हैं डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू। और या
1: विनय, कॉस्ट ऑफ लिविंग का असर कैसे पड़ रहा है आपकी इस स्टोर पर या यहाँ के समुदाय पर?
0: देखो कॉस्ट ऑफ लिविंग डेफिनेटली यस बढ़ रही है, और साथ ही साथ बिकॉज ऑफ द ग्लोबल सिचुएशंस एंड ऑयल प्राइसेस एंड एवरीथिंग ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी बढ़ गया, और सामान इंडिया से आने मेलबर्न तक आने के लिए भी बहुत सारी चैलेंजेस फेस करना पड़ रहा है कि ना जो कंटेनर से वो पोर्ट्स पे रुक रही है बिकॉज देयर नॉट एनफ स्पेस इन द पोर्ट्स एंड स्टफ। बट हाँ, इन सेइंग दैट लाइक सारे के चीज भी प्राइसेस भी बढ़ गया और कस्टमर थोड़ा स्ट्रेस में है डेफिनेटली इन सेइंग दैट लाइक यू नो द स्पेंडिंग जो है थोड़ा कम हो गया। बट हमारा कोशिश यही हो रहा है कि लाइक हम डिस्ट्रीब्यूटर के साथ बात करके जितना ज़्यादा सामान मतलब बल्क में उठाए तो फिर हमें सस्ता पड़े और हम कस्टमर को आगे सस्ता दे सकते हैं। तो ये चैलेंज लाइक वर्क इन प्रोग्रेस है जो हम हर मंथ हर वीक ऑन वीक बेसिस पे जा रहे हैं। जैसे अभी लास्ट 2 मंथ से जो ग्लोबल की सिचुएशन कोविड के बाद जो बिगेस्ट क्राइसिस अभी लग रहा है कि दामें बहुत ज़्यादा बढ़ गया, नियरली हम सो तेल पे ज़्यादा पड़ा है। ओके, और जो जैसे दालें हो गया, चावल भी हो गया, और क्योंकि ना ये सारे जो शिपिंग कॉस्ट जो होता है ना वो एक्सट्रीमली बढ़ गया था बिकॉज ऑफ द ऑयल प्राइसेस, तो उसके हिसाब से और मार्केट में एक सिचुएशन ऐसा ही है कि लाइक इंटरेस्ट रेट भी बढ़ गया। सो दैट्स अनदर रीजन वेयर कस्टमर्स आर लाइक यू नो वेरी कॉशियस स्पेंडिंग कर रहे हैं अभी।
1: अच्छा, मैं देख रही हूँ आपकी दुकान पे बहुत सारा सामान है, लेकिन सबसे ज्यादा क्या बिकता है?
0: मोस्टली बिकॉज इट्स ए प्रीडोमिनेंट पंजाबी कम्युनिटी है शेपर्टन में और मोस्टली वेजिटेरियन, से दालें बहुत ज्यादा बिकता है। दालें बहुत मतलब आटा तो है ही है, मगर जो इंडिया से जो आटा आता है थोड़ा कॉस्ट ज़्यादा हो गया बिकॉज ऑफ द शिपिंग कॉस्ट। अभी जो लोकल आटा है वो तो अवेलेबल है ही है, तो आटा तो फर्स्ट ऑप्शन है, फर्स्ट हाई सेलर है। बट अदर देन आटा द नेक्स्ट वन इज लेंटिल्स, दालें बहुत ज़्यादा बिकता है, और पंजाबी स्पेशली मोस्टली वेजिटेरियन ही है तो फिर उनको तो चाहिए ही चाहिए कि दालें तो रहना ही है अपने घर में, एक नहीं दो नहीं हर तरह की दाल रहनी चाहिए उनको। तो या उसके बाद में हो गया तो स्पाइसेस के मसाले के बिना तो इंडियन खाना बनता ही नहीं है। तो ये है, और नेक्स्ट आ गए तो स्नैक्स, जो इंडिया के जो स्नैक्स होता है वो यहाँ पे बनना मतलब इतने सारे नॉट सभी लोग बना सकते हैं, तो फिर नमकीन हो गया, मंचिंग हो गया, ये सारे बहुत ज्यादा बिकता है जी।
1: बिने, हर बिजनेस के अपने अपने चैलेंजेस हैं, आपके चैलेंजेस क्या रहे शेपर्टन में?
0: जब हम आए थे, जब हम शॉप नया लिया तो थोड़ा हमारे तरफ से ही थोड़ा मुश्किल हुआ कि लाइक यू नो सभी, क्योंकि ना हम साउथ इंडियन से और यहाँ पे प्रिडोमिनेंटली नॉर्थ इंडियन

0: ने, तो हमें बड़ा दिक्कत हुआ कि लेकिन चीजों को समझना कि क्या खाते हैं क्या नहीं खाते हैं, कि कौन से लैंग्वेज की बैरियर भी एक हो जाता है कि लाइक चलो हम हैदराबाद से थोड़े बहुत करके हिंदी तो जानते हैं बट लाइक थोड़ा है, मगर लाइक कम्युनिटी बहुत अच्छा साथ दिया हमने हमको, और हम मतलब उन्होंने अपने अपने लोग मान के हमको मतलब सिखाया बताया कि कौन से आइटम को कैसे हम यूज करते हैं।
1: देखा जाता है जो दूसरे समुदाय के लोग हैं वो पहचानते हैं कि ये भारतीय समुदाय से जुड़ा है।
0: एग्जैक्टली मैं उसके ना बड़ा एग्जांपल एक देता हूँ कि जब हमारा फेस्टिवल्स होता है, एक्चुअली सभी लोग लगता है यार लाइक हम इंडिया छोड़ के आ गया, परिवार को छोड़ के आ गया, रिश्तेदारों को छोड़ के आ गया, वो वाली बात है ही नहीं जो इंडिया में हम करते थे फेस्टिवल के टाइम पे। मगर जब आप यहाँ पे शपड़न में आए रह रहे हो ना, तो आपको कभी भी ये महसूस नहीं होगा कि लाइक आप कुछ इंडिया वाली फीलिंग मिस हो रहे हो। सभी कम्युनिटी दिवाली पे इकट्ठा हो जाते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं, पटाखे करते हैं, दिवस एक दूसरे को मतलब घर पे बुला लेते हैं। सो देयर इज लाइक ए फैमिली एटमॉस्फियर बहुत ज़्यादा है शपड़न में, जो हमने कम्युनिटी सारे अपने लाइक यहाँ पे आके वो एक नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट की बाउंड्री सभी मिट गया।
1: आपको बता दें ये साक्षात्कार हाल ही में SBS हिंदी टीम ने शपड़न की यात्रा के दौरान रिकॉर्ड किया था।
2: SBS हिंदी पर हमारे साथ वापस जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं हूं नबील और अभी अभी आपने सुनी नताशा कॉल की रिपोर्ट रीजनल एरिया शेपर्टन से, कैसे एक ग्रोसरी स्टोर जो है वो ना सिर्फ एक दुकान बल्कि कम्युनिटी को जोड़ने का भी एक जरिया बनती है। और आज के शो का जो हमारा सवाल था वो ये था कि आपकी फेवरेट बॉलीवुड मूवी कौन सी है स्पोर्ट्स से रिलेटेड, और कुछ लोगों ने मैसेज किया है कि लगान है, कुछ लोगों ने मैसेज किया है कि जो जीता वही सेकंड। आप भी अपना मैसेज भेजिए 04397997667 हमारा नंबर है, अपना नाम जरूर लिखिएगा। और जब तक आपके मैसेजेस आते हैं अब वक्त हो गया है एक गाने का, गाने के बाद लेंगे एक एड ब्रेक और एक आखिरी रिपोर्ट और कुछ और गाने।

0: What's Spectrum Internet? It's the most reliable internet to stream, game, and browse the way you want. It's also security to keep your whole family safe online. And it's adding the power of Wi-Fi 7 to your home, so you're ready for today and tomorrow. That's fast, secure, and future-ready internet for your family. So what's Spectrum Internet? It's everything you want it to be. Switch today at Spectrum.com. Services not available in all areas. Restrictions apply.
1: Ice Cube's Big 3 is back. The most competitive basketball league on earth is on CBS this Saturday. Big 3 All-Star Dwight Howard and the LA Riot take on Greg Monroe and the Dallas Power. Then Coach Rick Mahorn, Sensation Nazir Kaur, and the Detroit Amps look to protect home court against back-to-back MVP Michael Beasley and the defending champs Miami 305. The game played the way you love. Watch live Saturday on CBS at 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific, and catch replays on BET.
2: Yay!
3: Prender el fuego, checar que todo esté en su lugar, recibir el atún.
4: Regrésalo, eso es salmón, no atún.
3: Probar la salsa.
4: ¡Ya no hay aguacate!
3: Ordenar más hielo. Mover la mesa 8 con un especial, un horno no jala. Ponerle Miracle Grow Plant Food a mi jardín de hierbas de olor.
4: La mesa 12 cambió su orden, salió el mismo plato dos veces. ¡Se nos acabó el cilantro!
3: Se cayó una charola.
5: Está claro que el jardín de Pablo esté creciendo más verde y frondoso que nunca. Es un milagro. Es Miracle Grow.
6: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on two purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit Dick's.com/scorecardplus for details.
7: अपने पसंदीदा प्रोग्राम सुनने के लिए हमारी ऑडियो ऐप आज ही डाउनलोड करें। ये ऐप स्टोर और गूगल प्ले पर मुफ्त उपलब्ध है।
8: SBS हिंदी पर हमारे साथ वापस जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अब समय हो गया है हमारी शो के आखिरी रिपोर्ट का, और ये है SBS एग्जामिन्स का एक खास अंश। लेकिन उससे पहले कुछ मैसेजेस पढ़ देते हैं। एक मैसेज आया है पनव का मेलबर्न से। वो लिखते हैं कि जादूकर जो नेटफ्लिक्स में हाल ही में आई थी, वो इट्स रिलेटेड टू सॉकर फुटबॉल, वो एक इंटरेस्टिंग स्पोर्ट्स मूवी है जो देख सकते हैं। और आपकी फेवरेट बॉलीवुड स्पोर्ट्स मूवी कौन सी है? 0439-799-767 पर अपने नाम के साथ जरूर अपना मैसेज भेजिए। और चलिए अब आपको आखिरी रिपोर्ट सुना देते हैं। ऑस्ट्रेलिया एक्सप्लेन के इस एपिसोड में ऑस्ट्रेलिया के फंड रेजिंग नियमों को समझते हैं। वो चाहे किसी चैरिटी में डोनेशन देना हो या खुद पैसे जुटाने की कोशिश करना हो। इसे प्रस्तुत कर रही है आपके लिए अनीता ब्रार।
9: आप सुन रहे हैं ऑस्ट्रेलिया एक्सप्लेन्ड, SBS ऑडियो पॉडकास्ट जो आपको ऑस्ट्रेलिया में रहने के तरीके में मदद करता है।
10: दान करना दिल के करीब होता है और इस काम में मदद करने में बहुत अच्छा लगता है। लेकिन कैसे पता चले कि कोई फंडरेजर सही है या नहीं, और आप एक फंडरेजर कैसे सेटअप कर सकते हैं? ऑस्ट्रेलिया एक्सप्लेन के इस एपिसोड में हम आपको ऑस्ट्रेलिया के फंड रेजिंग नियमों को समझने में मदद करेंगे। अब वो चाहे आप किसी चैरिटेबल काम के लिए डोनेशन देना चाहते हों या खुद पैसे जुटाने की कोशिश करना चाहते हों। SBS पर मैं हूं अनीता बरार। ऑस्ट्रेलिया में फंडरेजिंग कानून को समझना मुश्किल हो सकता है। ऐसा इसलिए है कि हर राज्य और क्षेत्र में अपने फंडरेजिंग कानून होते हैं। फंडरेजर लोकल सरकार की मंजूरी और दूसरे कानूनों जैसे ऑस्ट्रेलियन कंज्यूमर लॉ और प्राइवेसी कानूनों के तहत भी आ सकते हैं। ऑस्ट्रेलियन चैरिटीज एंड नॉट फॉर प्रॉफिट कमीशन ACNC ऑस्ट्रेलिया का चैरिटी रेगुलेटर है, जो ये पक्का करता है कि रजिस्टर्ड चैरिटी सही तरीके से काम करे और अपनी जिम्मेदारियों का पालन करे। लेकिन फंडरेजिंग कैसे की जाती है, इस पर इसका कोई सीधा कंट्रोल नहीं है। ये हर राज्य या क्षेत्र पर निर्भर करता है। ACNC कमिश्नर सू वुडवर्ड बताती हैं।
11: Our main role is to register charities and make sure they follow certain rules. So, for example, if you collect money from the public in a shopping centre, there are specific rules that your organisation

0: would have to follow. And these are state-based, so they can vary depending what state you're in. We care about where the money goes, so what happens with the funds that are raised, but we're not the regulator for fundraising.
1: ACNC के साथ registration अपनी मर्जी से होता है, लेकिन अगर कोई charity register में है, तो इसका मतलब है कि उसे not-for-profit status और good governance standards का पालन करने के लिए जांचा गया है. ACNC कमिश्नर वुडवर्क का कहना है कि अगर कोई चैरिटी रजिस्टर में है तो उसके क्रेडेंशियल चेक करना आसान है.
0: You can look up the charity register just on your phone, on your computer. If you just put in the words charity register, you'll find us. It's often very helpful for people because it can give you information about who runs the charity, what type of activities it does, where it gets its money from. So before you donate, you can get that information to make sure that your money is going to the cause that you most care about. And you can also feel confident that it's a real registered charity and they do have obligations to follow certain rules about good governance.
1: सभी registered charity donations के लिए tax detectable रसीदें जारी नहीं करती. Justice Connect की not-for-profit law service की वकील Emmy Williams बताती हैं.
2: Donations are tax deductible only when the donation is made to an organisation that the tax office, so the ATO, has endorsed as having deductible gift recipient or DGR status. And the way you can work that out is to go to a website called ABR Lookup or ABN Lookup and type in the name of the organisation and it will very clearly state if an organisation has DGR status.
1: अगर आपको किसी चैरिटी के फंडरेजिंग के तरीके को लेकर कोई चिंता है तो आप इसे अपने राज्य या क्षेत्र के रेगुलेटर के सामने उठा सकते हैं. एसीएनसी कुछ फंडरेजिंग मामलों में भी दखल दे सकता है, जैसे कि कोई चैरिटी जमा किए गए सभी फंड का हिसाब न दे. एसीएनसी को मिली सभी शिकायतों की जांच की जाती है. हालांकि आपको बिना किसी और अपडेट के सिर्फ ये कंफर्मेशन मिलेगा कि आपकी शिकायत मिल गई है. अगर आपको किसी फंडरेजिंग स्कैम का शक है तो डोनेट करने से मना कर दें और अपने लोकल रेगुलेटर या नेशनल स्कैम वॉच सर्विस को scamwatch.gov.au पर रिपोर्ट करें. ऑनलाइन पैसे डोनेट करते समय ये जांच करना आवश्यक है कि आप किसी आधिकारिक वेबसाइट पर हैं. जल्दबाजी न करें, शक वाले लिंक पर क्लिक करने से बचें और फंडरेजर के क्रेडेंशियल अवश्य देखें. क्या होगा अगर कोई फंडरेजर आपसे व्यक्तिगत रूप से संपर्क करे? पीटर हिल्स जोन्स पब्लिक फंडरेजिंग रेगुलेटरी एसोसिएशन के सीईओ हैं. ये एक इंडस्ट्री बॉडी है जो ऑस्ट्रेलिया में फेस टू फेस फंडरेजिंग करने वाली चैरिटी और फंडरेजिंग एजेंसियों का प्रतिनिधित्व करती है. वो फेस टू फेस फंडरेजिंग स्कैम के लिए महत्वपूर्ण बातें बताते हैं.
3: इफ द इंडिविजुअल फंडरेजर ऑन द स्ट्रीट और एट योर डोरस्टेप isn't in uniform, doesn't have a photo ID, and is in particular asking for a cash donation or only asking for a one-off donation, those are all things which should certainly alert members of the public that it might not be a legitimate fundraiser. Our message really is that if in doubt, don't donate. Take your time, pause. You can always go on the website, call the charity to verify, and then you can donate at a future time.
1: Face-to-face fundraisers, 3 मुख्य तरह के होते हैं. Street fundraiser, डोर टू डोर और शॉपिंग सेंटर के अंदर काम करने वाले फंडरेजर. आप उनसे कुछ खास तरह के व्यवहार की उम्मीद कर सकते हैं.
3: Being polite, being respectful, not obstructing any members of the public, not approaching members of the public when they're seated, particularly at cafes and restaurants, things of this nature. But yeah, the main thing is the fundraisers need to very clearly explain the role of the charity, why they're asking for money, and then engage in a conversation that's based on a respect for the donor. And if the individual person on the street or at the door-to-door doesn't feel that they want to donate, that their wishes are respected.
1: Up. अगर आप स्वयं किसी काम के लिए खुद पैसे जमा करने की कोशिश कर रहे हैं तो क्या होगा? जस्टिस कनेक्ट की एमी विलियम्स कहती हैं कि आपको हमेशा अपने राज्य या क्षेत्र के रेगुलेटर से पता करना चाहिए कि आपको लाइसेंस की आवश्यकता है या नहीं और आपको किन नियमों का पालन करना होगा. हालांकि वो कहती हैं कि पैसे के लिए प्राइवेट अपील आमतौर पर फंडरेजिंग कानूनों से रेगुलेट नहीं होती है.
2: So that's things like asking your friends or family for money to support a personal

0: activity. Like, for example, I want to go overseas and I want you to donate to my volunteering adventure overseas. Fundraising at work. So if you've got an employee at your workplace who needs to get medical expenses paid for, and you fundraise in your workplace for that to happen, that's typically not regulated by fundraising laws.
1: अगर आप online crowdfunding अपील शुरू कर रहे हैं, तो बहुत अधिक संभावना है कि ये एक regulated activity है. Williams online fundraiser के बारे में दो खास बातें बताती हैं. वे अलग-अलग fundraising कानूनों के तहत आ सकते हैं. उन्हें ये भी स्पष्ट बताना चाहिए कि फंड कहाँ जाएगा. दूसरे शब्दों में फंडरेजर का सही मकसद क्या है, ताकि दानकर्ताओं को गुमराह होने से बचाया जा सके.
0: If you're crowdfunding online, typically you're going to need to be across all the different laws in each state and territory, and that means you might need a license in each state and territory. The other really important thing to note about crowdfunding is you need to be really clear on the purpose. And I guess a message for donors as well too is to ask the question, what is the purpose of this organization?
1: ये एक SBS audio podcast था. Australia Explained के और दूसरे podcasts के लिए sbs.com.au/australiaexplained पर जाएं.
2: SBS हिंदी पर आपका एक बार फिर से स्वागत है. मैं हूं नबील और अब शो का अंत आ चुका है और हम इस आपके लिए प्ले करेंगे एक आखिरी गाना. इस गाने के साथ मैं आपसे लूंगा अलविदा, इस वादे के साथ कि हम जल्द मिलेंगे एक नए शो में एक नए शाम. और तब तक सुनते रहिए SBS हिंदी और हमारे फेसबुक पेज को जरूर फॉलो करिए, इंस्टाग्राम पेज को जरूर लाइक करिए, ताकि हम आप तक कॉन्टेंट पहुँचा सकें.

0: आप तीन झंडे एक साथ लहराते हुए देख सकते हैं, ऑस्ट्रेलियन नेशनल फ्लैग, एबोरिजिनल फ्लैग और टोरेस स्ट्रेट आइलैंडर्स फ्लैग। ऑस्ट्रेलिया के तीन झंडे क्यों हैं? इसका जवाब ऑस्ट्रेलिया के फर्स्ट नेशंस लोगों से शुरू होता है। एबोरिजिनल और टोरेस स्ट्रेट आइलैंडर ऑस्ट्रेलिया के दो मुख्तलिफ मकामी लोग हैं जिनकी अपनी तारीख, सकाफत, जबाने और झंडा है। टोरेस स्ट्रेट आइलैंडर परचम सब्ज, नीला, स्याह और सफेद होता है। इसमें एक सफेद रिवायती हेड ड्रेस या सरपोश भी है जिसे दरी कहा जाता है। इसके मरकज में एक सफेद सितारा है। ये झंडा टोरेस स्ट्रेट आइलैंडर लोगों और उनके जमीन, समंदर, सकाफत और कम्युनिटी से ताल्लुक की नुमाइंदगी करता है। बहुत से टोरेस स्ट्रेट आइलैंडर लोगों के लिए ये झंडा शनाख्त और वाबस्तगी की ताकतवर अलामत है, चाहे वो जजीरों पर रहें, मेनलैंड पर हों या बैरून मुल्क। ये समझने के लिए कि ये झंडा इतने लोगों के लिए इतना अहम क्यों है, टोरेस स्ट्रेट से आगाज करना मददगार है। टोरेस स्ट्रेट आइलैंड क्वींसलैंड के केप यॉर्क के सिरे और पापा न्यू गिनी के दरमियान वाकई जजायर का एक ग्रह है। ये जजायर ऑस्ट्रेलिया का हिस्सा है और टोरेस स्ट्रेट आइलैंडर लोगों का घर है जिनकी मुख्तलिफ सकाफतें, तारीख और जबान है। 1992 में आइलैंड कोऑर्डिनेटिंग काउंसिल ने टोरेस स्ट्रेट आइलैंडर्स के लिए एक कम्युनिटी परचम डिजाइन करने का मुकाबला मुनाकिद किया। जीतने वाला डिजाइन अंकल बर्नार्ड नैमोक ने थर्सडे आइलैंड से तैयार किया था। अंकल बर्नार्ड मुकाबले के कुछ अरसे ही बाद इंतकाल कर गए, इससे पहले कि उनका डिजाइन इतना अहम निशान बन जाए। उनके बेटे बर्नार्ड नोमोक जूनियर के लिए ये झंडा उनके वालिद से ताल्लुक को जिंदा रखता है। जब वो इसे देखते हैं तो उन्हें अपना बचपन और वो रातें याद आती हैं जो वो अपने वालिद को ड्राइंग करते देखते थे। झंडे पर हर रंग और अलामत का एक खास मतलब होता है। सब्ज रंग जमीन की नुमाइंदगी करता है, नीला टोरेस स्ट्रेट के पानियों को और स्याह टोरेस स्ट्रेट आइलैंडर लोगों की नुमाइंदगी करता है। सफेद दरी टोरेस स्ट्रेट आइलैंडर की सकाफती शनाख्त की अलामत है, जबकि सफेद पांच कोनों वाला सितारा टोरेस स्ट्रेट के पांच अहम जजायर की नुमाइंदगी करता है। एबोरिजिनल और टोरेस स्ट्रेट आइलैंडर कानून की तालिब इल्म टायरल वेती थर्सडे आइलैंड में पैदा हुई और परवरिश पाई। अब वो टाउनसविल क्वींसलैंड में रहती हैं। उनका कहना है ये झंडा टोरेस स्ट्रेट आइलैंडर कम्युनिटी, सकाफत और लोगों की नुमाइंदगी करता है।
1: It's a part of our cultural identity in itself. It's a big part of our story. It's really good to have that sense of representation too. And especially being in a small community, you see this flag. It tells a story, who we are, where we're going, and how we're moving forward past all the injustices since colonization. How people were considered flora and fauna and not as people. So for me, this flag speaks for itself. It's something to make me feel seen as a person because it's representing my people.
0: बर्नार्ड जूनियर और टायरल दोनों थर्सडे आइलैंड में पले बढ़े, जिसे वो एक छोटा मगर मसरूफ कम्युनिटी करार देते हैं जो खानदान और सकाफत से भरपूर है। टायरल के लिए झंडा रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा है।
1: Seeing flags in places such as courtrooms and just everyday places up in the mainland, it just makes me feel so seen where I can come from a small island off the mainland, but entering mainland, seeing my flag in a courtroom, seeing my flag wrapped up your local post office, seeing some people wearing it on their clothing. It makes me feel like people up here in the mainland have so much love and respect for us up there. It just makes us all feel a part of Australia and all that and how we're all connected and trying to move forward as one.
0: बर्नार्ड जूनियर को याद है कि झंडे के वसी पैमाने पर पहचाने जाने से पहले जिंदगी कैसी थी। उन्होंने 1990 की दिहाई के मुकाबले के बाद इसे आहिस्ता आहिस्ता जजायर पर फैलते हुए देखा। आज टोरेस स्ट्रेट आइलैंडर झंडा पूरे ऑस्ट्रेलिया में लहरा रहा है। आप इसे स्कूलों, यूनिवर्सिटीज, पार्लियामेंट, मकामी काउंसिलों और अदालतों के बाहर देख सकते हैं। ये अक्सर एबोरिजिनल और ऑस्ट्रेलियन नेशनल फ्लैग के साथ लहराता है। टायरल के लिए यूक्रेन्स में बिजनेस और कानून की तालीम हासिल कर रही हैं, ये नुमाया होना बहुत ताकतवर है। बर्नार्ड जूनियर ने भी टोरेस स्ट्रेट आइलैंडर्स का झंडा घर से बहुत दूर देखा। उन्होंने अपनी दस्तावेजी फिल्म कैरिंग दी फ्लैग के साथ बैरून मुल्क फेस्टिवल्स का सफर किया और लंदन, पेरिस और न्यूयॉर्क में ऑस्ट्रेलियन सिफारतखाने में इसे लहराते हुए देखा। हर बार वो कहते हैं कि ये उन्हें थर्सडे आइलैंड पर उनके बचपन की याद दिलाता है, जब वो अपने वालिद को पहले डिजाइन पर काम कर

0: करते देखते थे।
1: No matter where I am, when I see the flag, I see my childhood growing up on the island and overlooking my dad's shoulder, doing all them sketches. And even when I took the documentary over to Canada and the flag was flying there, it took me back to Australia. And I didn't even think that I was in another part of the world. I just remembered my childhood and then I snapped into reality and I was, oh, that's right. I'm in another country. So that's the feeling that I have every time I see the flag.
0: बर्नार्ड जूनियर चाहते हैं कि बच्चे टोरेस स्ट्रेट आइलैंडर परचम की कहानी से वाकिफ हों। उन्होंने बच्चों की किताब हमारा परचम हमारी कहानी थॉमस मायो के साथ मुश्तरका तौर पर तहरीर की, जिसको टोडी जी मोर्डी ने तस्वीरों के साथ आरास्ता किया।
1: I've had a lot of readings at schools, especially around Reconciliation Week and NAIDOC, and all the comments that I have from the teachers and school support workers was the kids really enjoy reading the book.
0: जब आप टोरेस स्ट्रेट आइलैंडर परचम देखते हैं तो आप जमीन, समंदर और लोगों की जिंदा अलामत देख रहे होते हैं। ये उन सकाफतों की अक्कासी करता है जो टोरेस स्ट्रेट, ऑस्ट्रेलिया और दुनिया भर में फल फूल रही हैं। टायरल के लिए झंडा माजी और हाल की कहानी सुनाता है, लेकिन ये मुस्तकबिल की कहानियों को भी मुतासिर करता है।
2: It's good that we have a flag dedicated and designed by us for us to motivate us to continue our journey and move forward so that we are having pride in acknowledging our cultural identity.
0: सामी टोरेस स्ट्रेट परचम की अहमियत और ऑस्ट्रेलिया के इस परचम से वाबस्तगी के हवाले से आप सुन रहे थे इस हफ्ते का ऑस्ट्रेलिया एक्सप्लेन, और मैं हूँ वरदा वकार।
3: आप SBS ऑडियो का पॉडकास्ट सुन रहे थे। ऑस्ट्रेलिया एक्सप्लेन की दीगर किस्सा सुनने के लिए sbs.com.au/australiaexplained पर जाइए।
0: जी सामईन, खुश आमदेद। ऑस्ट्रेलिया आपने समाप्त किया और अब हम नशरियात में शामिल करते हैं नाते रसूल मकबूल।

0: हैं जिससे हम इन्वायरमेंट को भी बेनिफिट दे सकें और साथ ही साथ लोगों के दिमाग में आइडियाज डाल सकें कि हमारी जरूरियात क्या हैं और हमें किस तरह फोकस रखना चाहिए, क्योंकि यही चीज दीन सिखाता है हमें।
1: वो कहते हैं मुसलसल 7 सालों से मुख्तलिफ इलाकों में शहरियों को सबील में पौधा देने का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता बरस 6,000 पौधे लोगों को दिए गए, रवां बरस 10,000 से ज़ायद का हदफ रखा हुआ है।
0: अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा 7वां साल है और इस साल जो है वो हम मरीज जाफर तैयार में, न्यू रिजविया में, अमरोहा टाउन में और यहाँ सोलजा बाजार में प्लांट फॉर हुसैन, एक दरख्त हुसैन के नाम पे हम जो है ये सबील चला रहे हैं। फिगर्स की बात करूं तो पिछले साल हमने 6,000, सिर्फ पिछले साल की बात बता रहा हूं, 6,000 जो है वो हमने दरख्त निकाले थे और इस साल का टारगेट है हमारा इंशाल्लाह 10,000 पौधे निकालने का। ये दरख्त जो है वो सारे दरख्त वाले पौधे होते हैं, शजर होते हैं और साथ ही साथ जो है ये कराची के नेटिव दरख्त होते हैं।
1: जबरूद अली ने बड़े फखर के साथ हमें बताया कि लोग उन्हें तस्वीरें और वीडियोस भेजकर दिखाते हैं कि किस तरह उनका दिया गया पौधा अब आहिस्ता आहिस्ता तनावर दरख्त में तब्दील हो रहा है। नौजवान के मुताबिक उनकी सबील का मकसद लोगों को बताना है कि हम जिस माहौल में रह रहे हैं वहाँ दरख्तों की कितनी ज्यादा अहमियत है और ये दरख्त हमें किस तरह एक महफूज माहौल फराहम कर सकते हैं।
0: अल्हम्दुलिल्लाह दरख्तों का जो हमें फीडबैक आता है, लोग सराहने के साथ साथ आके हमें पर्सनली आके बताते हैं कि हम आपसे लास्ट ईयर, 2 साल पहले, 3 साल पहले दरख्त लेके गए थे। हमें वीडियोस भेजते हैं कि उन्होंने अपने घर किस तरीके से, वो सामने वाले जगह पे जो एक घर के सामने का एरिया होता है वहां पे वो दरख्त लगा दिया, किसी पार्क में जाके उस दरख्त को प्लांट कर दिया। तो इस तरीके से हम एक सराहने की वजह से जो है वो हम इसको और अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मेन हमारा आइडिया ये था कि लोगों के जहन में इस बात को डाला जाए कि हम जो है वो एक कॉन्क्रीट के जंगल में रह रहे हैं, हम अपने एनवायरनमेंट पे फोकस बिल्कुल नहीं करते, हम अपने कोशिश करते हैं घर को अच्छे से अच्छा कर लें, लेकिन हमें घर के बाहर के ही सांस लेनी होती है, हमें वो सांस लेने में मसला होता है, हमारी एनवायरनमेंट में जो डस्ट है, जो पोल्यूशन है और उसके साथ साथ जो चीजें आ रही होती है सांस की बीमारियों की शक्ल में, वो हमें बहुत सारी कराची खासतौर पर आवाम को तकलीफ देती है।
1: जबरूद अली कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग का पाकिस्तान पर बहुत गहरा असर पड़ा है। 2014 में लोगों को मालूम हुआ था कि हीट स्ट्रोक क्या होती है, इसी वजह से मुकामी लोगों को वो पौधे दिए जाते हैं जो माहौल दोस्त हों और हर तरह के मौसम में बासानी एक मजबूत दरख्त बनने में तब्दील हो सके।
0: जैसे कि आपको पता है ग्लोबल वार्मिंग का अफेक्ट जो है वो सबसे ज्यादा पाकिस्तान उन कुछ कंट्रीज में जिनका कार्बन एमिशन जो है वो इंतहाई कम है, जिसके निस्बत और उसके बरक्स जो है पाकिस्तान को अफेक्ट बहुत ज्यादा होता है ग्लोबल वार्मिंग का। कराची की बात करें तो पिछले 2014 के हीट स्ट्रोक के बाद से लोगों को पता चला कि हीट स्ट्रोक जैसी कोई चीज होती है जिसके काम पे भी हुसैन ने अल्हम्दुलिल्लाह अपने पार्ट अदा किया कि किस तरीके से हम रिक्शा ड्राइवर्स वगैरह को हेल्प आउट कर सकते थे। यहाँ जो दरख्त हम दे रहे होते हैं वो कराची के लोकल, जैसे कि मैंने बताया यहाँ बादाम का दरख्त होता है, नीम का दरख्त होता है, मोरिंगा, स्वैना और साथ ही साथ जो कुछ जो है वो अननेटिव प्लांट्स भी होते हैं, लेकिन वही जो कि शजर बन रहे हों और ऑक्सीजन ज्यादा क्रिएट कर रहे हों।
1: वो कहते हैं अगर सबील में दिए गए हमारे 10,000 पौधों में से सिर्फ 10% भी मुकम्मल दरख्त बन जाते हैं तो हमारे सबील लगाने का मकसद पूरा हो जाएगा।
0: अल्हम्दुलिल्लाह पौधे जो है सर हमने टारगेट रखा है वो 10,000 हमने जो है वो शजर देने हैं, जिसमें से हम अगर सोचे तो अगर 10% भी लग जाए तो हमारा जो लग जाएगा मतलब दरख बन जाए, बताए तनावर दरख बन जाए, तो हमारा गोल जो है वो इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह फुलफिल हो जाएगा।
1: जबरूद अली और उनके दोस्तों की इस मुनफरिद काविश को शहरियों की जानिब से भी सराहा जा रहा है। आगे बढ़े और आपको बताएं उन बहादुर खवातीन के बारे में जिन्होंने रवायती सोच को चैलेंज करते हुए अपनी एक नई पहचान बनाई। अगरचे ये खवातीन बुनियादी तालीम से महरूम रहीं, लेकिन हौसले, मेहनत और अज़्म के एतबार से किसी से कम साबित नहीं हुई। सिंध के जिला थर में कोयले के वजीर जखायर दरियाफ्त होने के बाद न सिर्फ इलाके की मईशत में तब्दीली आई बल्कि मुकामी खवातीन की जिंदगियों में भी एक मुस्बत इनकलाब बरपा हुआ। इन खवातीन ने बतौर डंपर ड्राइवर खिदमात अंजाम देकर न सिर्फ थर के अवाम बल्कि पूरे पाकिस्तान को हैरान कर दिया। थर में एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 175 अरब टन कोयले के जखायर मौजूद हैं, जहां हुकूमत पाकिस्तान की मंजूरी से मुख्तलिफ कंपनियां कोयला निकालने का काम कर रही हैं। उन्हीं कंपनियों में शामिल सिंध एग्रो कोल माइनिंग कंपनी ने मुकामी खवातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए 30 खवातीन को भर्ती किया और उन्हें ड्राइविंग की तरबियत फराहम की। इब्तदाई तौर पर खवातीन को खाली डंपर चलाने की तरबियत दी गई, जबकि बादजा मरहलावार उन्हें भरे हुए डंपर चलाने की अमली मश्क भी करवाई गई। आज ये हुनरमंद खवातीन न सिर्फ बाइज्जत रोजगार हासिल कर रही हैं, बल्कि मेहनत के जरिए अपने खानदानों की मआशी हालत भी बेहतर बनाने में अहम किरदार अदा कर रही है। रामू 6 बच्चों की माँ है और बच्चों का पेट पालने के लिए उन्होंने भी डंपर ड्राइवर बनने का फैसला किया। वो कहती हैं, जब मर्द डंपर चला सकते हैं तो हम भी किसी से कम नहीं।
2: मैंने ये सोचा कि अगर ये मर्द भी हैं तो हम जैसे ट्रक चला रहे हैं, मर्द भी चला रहे हैं तो मर्द में और औरत में कौन सा फर्क है, मर्द चला रहे तो मैं भी चला लूंगी।
1: वो कहती हैं, इब्तिदा में हमें 1 साल की तरबियत दी गई, जिसके बाद में अब कोयले को 1 जगह से दूसरी जगह बआसानी मुंतकिल कर लेती हूँ।
2: ऐसा नहीं है कि मैं चला लूंगी खुद ही, अभी मैंने ट्रक देखा ही नहीं, गाड़ी देखा ही नहीं तो कैसे चलाऊंगी। पहले इन लोगों ने मुझे ट्रेनिंग दी 1 साल की, मैंने ट्रेनिंग में आस्ता आस्ता पास होती गई आती गई पास होती गई आती गई, तो मैं जब ट्रेनिंग मेरी पूरी हो गई तो मैं पास हुई या एजिलिटी में आई हूँ। एजिलिटी में आने के बाद मैं कोयला जो है वो ट्रांसपोर्ट कर रही हूँ।
1: एक और डंपर ड्राइवर नुसरत कहती है, मुआशी तंगदस्ती के बायस ड्राइवर बनने का फैसला किया, जो आज दुरुस्त साबित हुआ।
3: कोयल माइनिंग कंपनी में मैं काम करती हूँ और मैं 2017 में आई हूँ यहाँ पे, और 1 साल की मैंने ट्रेनिंग की है और उसके बाद मैं जॉब करती हूँ। मेरे हालात कुछ अच्छे नहीं थे, गुर्बत की वजह से शायद एक तक रोटी खाते थे एक तक बैठे होते थे, इसी वजह से हमारे घर में लड़ाई भी हो गई थी और मेरे शोहर ने मुझे निकाल दिया था।
1: आसिया नामी खातून ड्राइवर कहती है, गुर्बत की वजह से पढ़ाई नहीं कर सकी थी, शादी हुई लेकिन वो भी कामयाब ना हो सकी। छोटे बहन भाई हैं, अब उनकी पढ़ाई को जारी रखने के लिए ड्राइविंग कर रही हूँ।
4: मेरा शोर पे नहीं है और माइटी के पास रहती हूँ, माइटी के पास पढ़े लिखे नहीं है, पढ़े लिखे नहीं तो हम यहाँ पे तो एंट्री एजेंट था तो मैडम मेविश और मैडम सना ने हमारी मदद की तो हम जॉब पे आ गए। ट्रेनिंग बचे नहीं हमारे भाई बहन है, पढ़ लिख रही है, अच्छा लगता है
1: तो। ऐसी ही एक और खातून ड्राइवर का मानना है कि उन्हें ये रोजगार मिलने से उनके रोजमर्रा के अखराजात पूरे करना आसान हो गया है।
5: हमारा घर भी सही चल रहा है, रोजगार मिल रहा है, थर पहले यहाँ पे कोई भी बेरोजगारी थी थर में, अभी रोजगार मिल रहा है।
1: मारुति खवातीन डंपर ड्राइवर्स की निगरानी करती हैं। वो कहती हैं, चूंकि कोयले को 1 जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करना इंतहाई मुश्किल काम है और वो काम भी हमारी खवातीन ड्राइवर्स कर रही हैं, जिसकी वजह से हमें एहतियाती तदबीर इख्तियार करना पड़ती हैं। ये एक मुनज्जम निजाम है जिसमें हम खवातीन ड्राइवर्स को उन्हें अपनी हिफाजत से मुतालिक मुसलसल आगाह करते रहते हैं।
6: आउटरीच की कैंपेन स्टार्ट की थी, इनको जाके इनके घरों तक मतलब अप्रोच किया था, जो कि इनके घर तक गई थी, इनके प्रॉपर एक इनके डिटेल्स वगैरह ली थी, जो लोग विलिंग थे फिर हमने उनको अप्रोच किया था। सिस्टम में ऐसे नहीं है कि सुबह आए अपनी मर्जी से गाड़ी निकाले और लेते हैं, ऐसा नहीं है। सुबह ये जब आती है तो हमारी एक प्रॉपर एक्टिविटीज का सिस्टम होता है जिसमें हम पूरे सेफ्टी के मुताबिक इनको ब्रीफ करते हैं, कल के दिन क्या हुआ और आज के दिन क्या होना है, और तो सारे मेजर्स इनको पहले से बताए जाते हैं, ब्रीफ किए जाते हैं, उसके बाद फिर इनको सेफ्टी प्रोटोकॉल जितने भी हैं वो सारे दोबारा से रिफ्रेश किए जाते हैं। अभी तक हमने एक्शन इस तरह का नहीं दिया, उनको प्रॉपरली फिर गाइड किया जाता है कि अवॉइड कैसे करना है, गलती तो हो गई लेकिन नेक्स्ट टाइम के लिए कैसे अवॉइड करना है।
1: ये खवातीन इस बात की रोशन मिसाल है कि अगर मौके फराहम किए जाएं तो अज़्म व हिम्मत रखने वाली खवातीन हर शोबे में नुमाया कामयाबियां हासिल कर सकती हैं। SBS उर्दू के लिए रिपोर्ट पाकिस्तान से एहसान खान ने पेश की।
7: लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, तबसरा कीजिए, फेसबुक पर SBS उर्दू फॉलो कीजिए।
8: और अब नशरियात में शामिल करते हैं हमदिया कलाम अबरार, अबरार लॉक की आवाज में तेरे रंग रंग।

0: चार साल तक जमा होते, फिर मैं चार साल फीफा वर्ल्ड कप आते, फिर मैं निकाल दूं उनको। ये चार साल का मेहनत है मेरा।
1: अच्छा, अगर हम पाकिस्तान की बात करें, कराची की बात करें, आप वैसे ब्राजील के फैन हैं, ये तो मुझे अंदाजा हो गया। सबसे ज्यादा मांग किसकी होती है, किसके झंडों की होती है, कैप्स की होती है या फिर शर्ट्स की होती है? ब्राजील की होती है, अर्जेंटीना की भी है, रोनाल्डो की भी बड़े फैंस हैं। आपकी नजर में कौन सबसे ज्यादा? सबसे
0: यहाँ पे जो कराची में सबसे ज्यादा जो पहल है ब्राजील के ज्यादा, टू नंबर में है अर्जेंटीना, ओके, थ्री नंबर में पुर्तगाल, ये कराची में है। इंशाल्लाह मैं तो यही उम्मीद करता हूँ ब्राजील इस साल वर्ल्ड कप जीत जाएगा। आज
1: और मामा ब्राजील यहाँ पर अपना रोजगार भी कर रहे हैं और साथ साथ अपनी ब्राजील की टीम से मोहब्बत का इजहार भी कर रहे हैं।
0: मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं, मैपल भी सजाया हुआ है एक हिसाब से।
1: फुटबॉल का वर्ल्ड कप सात समंदर पार शुरू हो रहा है, लेकिन उसका जोश और जज्बा पाकिस्तान के एक छोटे से इलाके लियारी के अली मोहम्मद मोहल्ले में देखा जा रहा है। कौन सा खिलाड़ी है ब्राजील में तुम्हें लगता है यार सबसे अच्छा करेगा, गोल भी करेगा, ब्राजील को छठी दफा वर्ल्ड कप भी जितवाएगा, क्या लगता है कौन है?
2: नेमार है।
1: ठीक है, नेमार कितने गोल करेगा?
2: नेमार
1: पांच ही गोल करेगा।
3: मैं 2018 से वर्ल्ड कप जब शुरू में तकरीबन मैच्योर जब हुआ था 2018 से मैं फुटबॉल देख रहा हूँ मैं, और शुरू से ही ब्राजील में नेमार का फैन हूँ। नेमार के स्किल्स कुछ ये सब मेरे को अच्छे लगते हैं, इसीलिए और ब्राजील है भी वर्ल्ड चैंपियन टीम, उसको खेलना जो तरह से वो खेलता है मेरे को अच्छा लगता है।
1: पहले भी मैसी जो है वो क्या उसे शानदार खेल भी, किस तरह लगता है कि दोबारा जो है वो टीम को विन करा सकता है और उम्मीदें हैं उससे?
4: इंशाल्लाह भी ये टीम को जितवाएगा, ये मैसी अच्छा खेलता है, मैसी का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ।
1: क्या लगता है इस दफा नेमार जो है वो ब्राजील को एक और वर्ल्ड कप जितवा सकता है?
5: नेमार का खेल देख के तो हमें ऐसा लग रहा है कि नेमार वापस इस बार का वर्ल्ड कप लेकर जाएगा। हम नेमार के सपोर्टर हैं और सपोर्टर थे और रहेंगे।
6: वो वहाँ पे मेरे फेवरेट प्लेयर है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, और उम्मीद तो यही है क्योंकि ये उनका आखिरी वर्ल्ड कप है, तो हम चाहते हैं को कि रोनाल्डो ट्रॉफी वर्ल्ड कप ट्रॉफी ले।
1: अगर पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड कप फुटबॉल के लिए क्वालिफाई करती है तो शायद जो रोनाल्डो को, मैसी को, एम्बाप्पे को या सलाह को या और सुपर स्टार्स को सपोर्ट कर रहे हैं वो किसी पाकिस्तानी लियारी के वाले को भी सपोर्ट करते हैं किसी,
6: तो पर्सनली ये तो ये एक डिसअपॉइंटमेंट भी है दिल से कि जिस मुल्क में हम रहते हैं तो जो हमारा कौमी टीम है वहाँ पे वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट नहीं कर पाती है। तो बात यह भी है कि अगर आप अंदाज़ा लगाएं कि पाकिस्तान के लोग जिस तरह से फीफा वर्ल्ड कप की टीम को सपोर्ट कर रहे हैं, अगर इसी वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की अपनी टीम होती तो जहाँ से इंसान की सोच खत्म होती है वहाँ से शुरू होगी कि क्या क्रेज होगा पाकिस्तान की टीम को सपोर्ट करने के लिए, स्पेशली यहाँ लियारी से, क्योंकि यहाँ पे फुटबॉल को ज्यादा खेला और दिया जाता है।
1: मोहम्मद जान ये बताओ कि किस टीम को सपोर्ट कर रहे हो और कौन सा खिलाड़ी तुम्हारा फेवरेट है? लगता है तुम्हारी फेवरेट टीम इस दफा वर्ल्ड कप ट्रॉफी उठाएगी?
7: हाँ, मेरा नाम है मोहम्मद जान और मेरा टीम है पुर्तगाल, और मैं इस लियारी में मैं रह रहा हूँ, ये इंशाल्लाह पुर्तगाल जीतेगा।
1: मीर साहब कब से सपोर्ट कर रहे हैं अर्जेंटीना को और क्या लगता है कि एक और टाइटल जो है वो उनके नाम आ रहा है या फिर इस दफा जो है वो मुकाबला सख्त होने जा रहा है?
8: मैं अर्जेंटीना को 2006 से सपोर्ट कर रहा हूँ, ठीक है, और मैं मेसी का बड़ा चाहने वाला हूँ, प्राउड सपोर्टर ऑफ लियोनेल मेसी। अर्जेंटीना मेरी फेवरेट टीम है, माराडोना जो मेरे वालिद साहब थे, मेरे चाचा थे, वो माराडोना के फ्रेंड थे, तो हम नेक्स्ट जनरेशन जो है ना ये मेसी के फैन हैं सारे।
1: अच्छा, किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं और क्या लगता है कि इस दफा आपकी टीम कुछ ट्रॉफी उठा पाएगी?
9: इंशाल्लाह मैं तो सपोर्ट ब्राजील को कर रहा हूँ, इंशाल्लाह 2002 के बाद दोबारा ट्रॉफी नहीं उठाएगी, इंशाल्लाह 2026 को इंशाल्लाह उठाएगी।
1: पाकिस्तान की टीम कभी माजी में भी शिरकत नहीं की, लेकिन एक फुटबॉल से मोहब्बत लियारी वालों की नजर आती है,
10: ये एक मोहब्बत है, एक ऐतिहासिक, एक यानी कि इसको इस चीज से इश्क है, इश्क की कोई कीमत नहीं, समझ गए आप? फुटबॉल हो जो भी हो वो तारीफ लायक है, हम उसको वेलकम करते हैं।
1: शानी भाई बहुत जबरदस्त आपने तैयारियां की, लग रहा है कि शायद हम किसी फुटबॉल के एरिना में आ गए, कहीं वर्ल्ड कप हो रहा है, ऐसा लग नहीं रहा कि शायद पाकिस्तान में या लियारी में जो है वो यहाँ पाकिस्तान की टीम मौजूद नहीं है वर्ल्ड कप में, जिस तरीके से आप लोगों ने तैयारियां की है, तो क्या कैसी ये तैयारियां थी, किस तरीके से स्टार्ट हुआ, क्या कुछ आप लोगों ने इंतजामात किए जरा बताइएगा।
11: जी ये यहाँ पर तो आपको पता है लियारी जो है फुटबॉल का घर समझा जाता है, और उनका दिल जो है अली मोहम्मद मोहल्ला जो हमारा इलाका है, यहाँ पर तो एक आप करें लियारी को जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये अली मोहम्मद मोहल्ला, और यहाँ पर जो तैयारी का अगर आप बात करें तो यहाँ पर हर किसी ने जो है यहाँ तक घर घर जो है चंदा वगैरह की अपनी मदद आप जो है कंट्रीब्यूशन वगैरह की किसी सियासी पार्टी या किसी मतलब उस पर जो है एनजीओ वगैरह किसी की हमारी सपोर्ट नहीं है और इन्होंने अपनी मदद आप करके जो है ये झंडे वगैरह बनाए अभी क्योंकि वर्ल्ड कप में शुरू होने में कुछ चंद ही दिन बाकी है लेकिन ये तैयारी जो है 2 महीने पहले ही शुरू हो चुकी है।
1: दीवारों पर बने हुए मुख्तलिफ ममालिक के झंडे और ये पहनी हुई मुख्तलिफ ममालिक की शर्ट्स इस बात का सबूत है कि लियारी में फुटबॉल का जोश और खरोश अरूज।
12: फीफा वर्ल्ड कप के हवाले से पाकिस्तान के शहर कराची के मुजाफात में लियारी में किस तरह का जोश खरोश पाया जा रहा है इस पर अभी आपने एहसान खान की रिपोर्ट सुनी। मैं हूं रेहान अलवी, आप हैं SBS उर्दू के साथ।
13: जी सामईन, इसके साथ ही नशरियात का इख्तिताम आ पहुंचा है। यहां ये याद दहानी कराते चलें कि SBS उर्दू की बराह रास्त नशरियात हर बुध और जुम्मे को ऑस्ट्रेलियन मशरकी वक्त के मुताबिक 3:00 पॉप देसी पर नशर होती है। बुध का प्रोग्राम बुध के दिन ही शाम 6:00 नशर मुकर्रर के तौर पर SBS 2 पर और जुम्मे का प्रोग्राम SBS 2 पर इतवार को शाम 6:00 नशर मुकर्रर के तौर पर पेश किया जाता है। अगर आप ये प्रोग्राम शाम को SBS 2 पर सुन रहे हैं तो कुछ खबरें तब्दील हो सकती हैं। ताजा मालूमात के लिए sbs.com.au/urdu पर जाइए। इसके अलावा SBS उर्दू इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पर भी मौजूद है। SBS साउथ एशिया पर उर्दू प्रोग्राम का इंतखाब कीजिए और अपनी पसंद के पॉडकास्ट अपनी पसंद के औकात में सुनिए। उसके अलावा आप हमें पैगाम भेज सकते हैं SBS उर्दू के फेसबुक पेज के जरिए, जिस पे आप ये बता सकते हैं कि नशरियात में क्या कुछ आपको पसंद आया है, कौन से ऐसे मौजूद हैं जिनका SBS उर्दू अहाता करे और वो कौन सी ऐसी मौसीकी या ऐसा कलाम है जो आप सुनना चाहते हैं नशरियात में। इसके साथ ही वक्त हो रहा है कि आपकी मेजबान वर्दा वकार चाहे इजाजत, हमें इजाजत दीजिए। फी अमान अल्लाह, लेकिन जाते जाते आप सुनते जाएं ये कवाली दम अदम मस्त कलंदर।